0: 88.4
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

ओके जी, पीर इसरार एंड मतियुल्ला शेगण ना ढेरस जातमन ना पीर से चिता सुर्राले मुक्सर मुफलावा श्री को दैसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान पर एक खुली प्रोग्राम के नुसंग ची माता सुला द सलूर की शैम्पू हवाला दरकाम चूंकि दागी खबर में था तो उकड़ंदा का शानदारी सर सलूर की सम ऑयल हम शामिल ली यानी कम ऑयल शामिल जी अदैसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान आज कम द गार्लिक यानी द उगी वाला द लेसन वाला ऑयल पकी शामिल लीजिए दूसरा कोकोनट यानी द कोपरी वाला द नारियल ऑयल यानी तेल पकी बिल्कुल मुंगसर शामिल ली दिन अलावा पकी मुंगसरा दैसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान के चिकम दीजिए द अलमंड यानी द बादाम वाला और सर कतासु द विख्तो खाइस नहीं लावा तासु खपल दिमाग खाइस तकवल वाले या खपल दिमाग तीस वल वाले न बिल्कुल पसर बांधी उलगवी ویختار بم خیسته شو ورسره با ملاو شستاسو دیماغو لیو کولی ور خیسته شانتا کی طاقت نو دامازی چرت ویجی دامازی پا خار کنی دامازی سیرب و سیرب دیسنا پروڈکت که

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: لنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیٹ
4: نیا حمید خان دا کارکنا ایم انتخاب دا اشما تنہا نشاگے نہ زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کریم
5: زمانوں دا نفید ملنگ دے اشما املت
6: زیم لطیف اللہ دا ٹھان انتخاب دا اشما اکنی
7: Yeah.

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जनाती से तारखा ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखा ना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे करा ना में कुर्ता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब खुदार तो ये या चेप एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملویجی
1: تارخانا داو توتا پا بانی گلشه جانزه بگاله شای مارکید دی اسما مین دیستیبیوتر حافظ زیر سیب سارا ملویجی

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: Enjoy back to back music with Radio Aman 88.4.

0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है।
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करता बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
5: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले। अवेलाजी सुनत अमल ले।
6: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ीदली यो। डेर गर्जिदली कड़ीदली यो।
5: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
6: और द नुरु मालूमातो दे पारा पदगल नंबर काल कवले शे
5: 0319-55-23-404।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है। ओडीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर

Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 and Radio Aman 88.4. जनाब आज है हमारे साथ दो स्टेशन और एक आवाज, और ये एक आवाज है किस नशो पाकिस्तान की, ये आवाज है खलील दाबे जवान की, ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की। जनाब हर रोज की तरह आज भी इस पैर के 4 बज चुके हैं जनाब, और किस नज पाकिस्तान का टी टाइम प्रोग्राम जी जनाब, वो घंटा की जिसके अंदर ढेर सारी चाय पी जाती है जनाब, और न सिर्फ चाय पी जाती है बल्कि चाय के साथ साथ जनाब ये खूबसूरत सा प्रोग्राम भी सुना जाता है कि जिसे कहते हैं किसन जनाब। टांग डेर खान में तमाम सुनने वाले कजन बॉयज जान के लिए 90 मामेड मामेड दादा दादी जान नाने नानी साहब सभी सुनने वाले को खलील दाबे जवान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप सभी के नाम। जनाब रोजाना की तरह आज भी पूरा एक घंटा, यानी कि पूरा एक घंटा मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ 4 बजे से लेकर जो घंटा होता है हमारा 5 बजे के दरमियान, और इससे ढेर सारी बातें हम आप लोगों के साथ करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होती, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो आपने कभी नहीं सुनी होती वो हम आपको देते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है केसन टी टाइम। जनाब बिल्कुल जी प्रमोशनल ये इंट्रोडक्टिव प्रोग्राम है, और बहुत अरसे से आप लोग हमारी कंपनी को जानते हैं, हमारी कंपनी आप लोगों के लिए क्या कर रही है जी जनाब, वो काम कर रही है जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हर बंदा किस तरह प्यारा लगना चाहता है, हमेशा खूबसूरत रहना चाहता है। और जनाब ये कोई अचंभे की बात नहीं है और ना ही ये बुरी बात है कि आप प्यारे लगना चाहते हैं, बल्कि केसन ने आपको बताया है कि जनाब प्यारा लगना तो आप

सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल्स कर सकते हैं, ना सिर्फ कॉल कर सकते हैं बल्कि एसएमएस भी कर सकते हैं। और एसएमएस करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए आपके नंबर्स के ऊपर रब्ता करेंगे। तो जनाब हमारे नंबर दो तरह नंबर है, एक है जोंग के नंबर और एक है टेलीनॉर के नंबर। तो जनाब जो आपके लिए इजी हो, एक्सेसिबल हो, तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं 03449363366 03446936376। और इसके साथ दूसरा हमारा जो नंबर है वो है जनाब जोंग के नंबर जो कि 03137985।

जनाब, इन दोनों नंबर के ऊपर आप लोग हमसे रब्ता करेंगे इसी घंटे के अंदर। और कल कुछ लोगों ने हमें फीडबैक शेयर किया है जो कि नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हमें लेट मिला, और उस फीडबैक को जनाब जरूर हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जनाब आप बहुत सारे गपशप के मैसेज तो करते हैं लेकिन हमारे लिए और सामीन के लिए कौन सी चीज मैटर करती है कि भाई फीडबैक जो होता है, क्योंकि जनाब हर बंदा ना कंपनी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करता। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, मैंने आपको कल आपको बताया कि टांग के अंदर केसन ने एक अपने जो है कदम जमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई हम खरीदें ना खरीदें, क्या ये रिजल्ट देगी कंपनी नहीं देगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने अरसे से ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो क्यों ना स्विच किया जाए, लेकिन वो लोग भी इंतजार में होंगे कि लोग रेडियो के ऊपर आकर, फोन के ऊपर आकर, SMS के ऊपर इस कंपनी के कौन सा फीडबैक दे रहे हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, वैल्यूएबल है आप लोग कि जो हमें हमारी कंपनी के हवाले से फीडबैक देते हैं, और एक ऑनेस्ट रिव्यू होता है। ठीक है जनाब, कोई प्लांटेड नहीं होती हमारी गेम, और 100% आपके इलाके के लोग और आपके इलाके के यूजर ही हमें केसन के प्रोडक्ट्स का फीडबैक दे रहे होते हैं, केसन के हवाले से होता है। तो जनाब केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यही वजह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता से हर रोज आप लोगों को एक प्रोडक्ट की कहानी बताते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि जनाब आपकी केसन की ये प्रोडक्ट आपके लिए कितने फायदेमंद हो सकती है, ठीक जनाब ये प्रोडक्ट आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है। तो अगर आप हमारा हर रोज यानी कि डेली वाला प्रोग्राम केसन टी टाइम रोजाना सुन रहे हैं 4 से 5, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ रही होगी कि भाई केसन नेचुरल पाकिस्तान के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं, वो प्रोडक्ट्स हमें कितना कोई

जनाब, हर रोज आप लोग बता रहे होते हैं केसन के प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी दिन आपको बताते हैं कि भाई अगर आपके घर में कोई बंदा चुप करके दर्द को सह रहा है तो जनाब उसकी चुप को पहचानिए और केसन का शिफाय दर्द घर में ले आइए और उसे सुकून की जिंदगी मुयस्सर कीजिए। अभी हम आपको बताते हैं कि जनाब अगर आपका पेट बड़ा हुआ है, आपका वेट बड़ा हुआ है यानी कि मोटापा है, तो जनाब केसन वेट कम पेट कम से आप अपना वजन कम करके आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्लिम एंड फिट बना सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि भाई अगर आपका मैदा खराब रहता है, खट्टी डिकारें आती हैं, आपको हाजमा नहीं होता, भूख नहीं लगती है, आपको भूख बंद है आपकी बिल्कुल भी जनाब, ठीक है जनाब, और साथ साथ में जनाब आपको मैदे के दीगर मसाइल जैसे कि तेजाब या सीने की जलन है, तो केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप इस्तेमाल करें। और बात करते हैं जनाब सूरज में जब निकलते हैं और आपकी स्किन अगर काली होने का आपको खतरा रहता है, तो केसन की जाफरानी क्रीम और केसन का जाफरानी सोप इस्तेमाल करें। अगर स्किन को फ्लॉलेस चाहते हैं तो जनाब आज का मॉडर्न फार्मूला केसन का ग्लूटा वाइट रेंज यानी कि ग्लूटा वाइट फेस वॉश, ग्लूटा वाइट क्रीम और सोप का इस्तेमाल कीजिए। और कभी कभी हम आपको बताते हैं कि जनाब सिर्फ चेहरे की खूबसूरती काफी नहीं होती है, एक बंदा जो खूबसूरत होता है वो सर से लेकर पांव तक खूबसूरत होता है। ये नहीं होता कि जनाब उसका सिर्फ चेहरा प्यारा हो बल्कि उसके बाल भी प्यारे होने चाहिए, उसके हाथ और पांव भी प्यारे होने चाहिए। जनाब तो ये सारा कुछ एहतमाम है केसन के पास, हाथ और पाँव को गोरा करने वाले केसन की हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम है, फेस के लिए जाफरानी क्रीम है। इसी तरीके से अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं तो जनाब केसन की आप क्रैक रिलीफ क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जख्मों से निजात के लिए केसन जो है आप क्रैक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब इतनी सारी प्रोडक्ट्स, ये सब आप लोगों के लिए, और एक प्रोडक्ट जो आजकल भाई हर लड़की के पास होनी चाहिए, हर लड़के के पास होनी चाहिए, वो है केसन का ब्यूटी स्प्रे। जी जनाब, जो कि हर के गुलाब और विटामिन सी इससे जो है एलम से बना हुआ है, और इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जब आप घर से निकलेंगे जी जनाब साबुन से चेहरा धोकर या फेस वॉश से चेहरा धोने के बाद अगर आप केसन का ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो यूं समझ लीजिए आपने नेचुरल सनब्लॉक जो इस वक्त वेयर किया हुआ है, क्योंकि विटामिन सी जो है नेचुरल सनब्लॉक का काम करता है, और ये स्किन टोनर गर्मी में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और यकीन कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट केसन ने ही मार्केट में लिया, अभी तक दुकानदारों को नहीं पता। दुकानदार कहते हैं कि ये जो स्प्रे होता है ना ये सर्दी में इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। अच्छा, उनसे पूछा जाए कि भाई व्हाई दिस कोला वेरी है जी, कैसे सर्दियों में इस्तेमाल होता है, तो वो कहते भाई ग्लिसरीन की वजह से ना चेहरे के ऊपर खुश्की होती है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बताते हैं भाई ये कहानी कुछ और है, वो कहानी आप पुरानी हो गई है जनाब, जो आप कहते थे कि स्प्रे का इस्तेमाल, अर्के गुलाब का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में होता है, और नहीं भाई अर्के गुलाब और विटामिन सी का इस्तेमाल गर्मियों में होता है, और आप जितना गर्मियों में इसको इस्तेमाल करेंगे, हम कहते हैं कि अगर एक अच्छा सा फेस वॉश आपके पास है और साथ में हमारा ब्यूटी स्प्रे यानी कि स्किन टोनर आपके पास है, तो भाई वल्ला आप यकीन कीजिए आपको इस सीजन में क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है बिल्कुल जनाब। ऐसे आपका चेहरा लशपश रहेगा, खूबसूरत रहेंगे, और जब खूबसूरत होंगे तो तारीफें होंगी, खूबसूरत होंगे

0: जी जनाब, कहानी के ऊपर मैं रुक गया और कहानी जो है वो मैं ढूंढ रहा था कि ये जो केसन के प्रोडक्ट हैं और केसन के प्रोडक्ट्स के अंदर जनाब हम कुछ प्रोडक्ट्स की हमने जोड़ियां बनाई हुई है जनाब, पेयर बनाए हुए हैं और जब आप पेयर की सूरत में इनको इस्तेमाल करेंगे ना, जोड़ी की सूरत में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ बेहतर ही मिलेंगे। क्यों बेहतर मिलेंगे भाई? इसमें मिलेंगे कि जनाब कहानियां मुकम्मल हमेशा जोड़ों से होती है।
1: राइट न्यूट्रिशन,
0: जी जनाब बिल्कुल सही सुना आपने, और जोड़ियां मुकम्मल ही जनाब जो है जोड़ों से होती हैं, पेयर से होती हैं। तो आज ही हमारे पास जो कहानी है
1: लैला
0: और मजनू की नहीं
1: है, हीर रांझा का वो
0: हीर रांझे की भी नहीं है
1: से वो जोड़ियां।
0: जी जनाब, मैंने खर्च मार दी ना इनके बेचारे इनके ट्रैक के अंदर तो नहीं बैठे।

0: जनाब जेसन जोड़ी जो है जनाब, ये जोड़ी जो है बहुत ही कमाल की जोड़ी है। ये बेसिकली बालों को खूबसूरत बनाने की हमने एक कोशिश की है, और इस कोशिश के अंदर हमने जनाब जो है वो 30 अज्जा को शामिल किया, यानी कि 13 अज्जा इसके शैम्पू के अंदर शामिल हैं और 17 अज्जा इसके ऑयल के अंदर।
1: सच्ची मोहब्बत,
0: हम कहते हैं भाई ये आपके बालों की पहली और सच्ची मोहब्बत है, और इसको इस्तेमाल करके देखिएगा इस जोड़ी को कि ये कितना कमाल करती है आपके बालों के साथ।

ग्रेविटेशन की हेयर केयर जोड़ी है और इन दोनों का इस्तेमाल भाई बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे खवातीन और लड़कियां ये करती हैं कि भाई ऑयल तो उनको पता है कि भाई केसन का ऑयल स्पेशल फार्मूला है बालों के लिए। और देखिए आप लोग सारे लोग जो एफएम सुनते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम सुनते होंगे, लेकिन एक चीज आप लोग नोट कर रहे होंगे कि केसन नेचुरल पाकिस्तान ने हर बीमारी को डिस्कस करने के लिए अलहदा से प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है जनाब, हर आपके हर मसले को डील करने के लिए एक अलग से स्पेशल फार्मूला बनाया है। जैसे कि केसन का जो हेयर ऑयल है जनाब, ये पीने वाला ऑयल नहीं है, ये सर पे लगाने वाला ऑयल है। ठीक है जनाब, लेकिन इसके जो फार्मूलेशन है वो स्पेसिफिक आपके बालों की खूबसूरती के लिए है। बालों के जितने भी मसले हैं ना, ठीक है जनाब, बालों के जितने मसले हैं उन सब मसलों को ये डील करता है। यानी कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा अगर आपके बाल बहुत अरसे से जो है गिर रहे हैं। ठीक है जनाब, आपके बालों के अंदर बहुत अरसे से खुश्की है, आपके बाल दो मुंह हैं, बाल आपके बेजान हैं, मुर्दा हैं, तो जनाब केसन जी जनाब केसन जोड़ी के इस्तेमाल से, यानी केसन ऑयल और शैम्पू के इस्तेमाल से आप दिनों के अंदर देखेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि भाई आपके बालों के अंदर कितनी खूबसूरती आती है, आपके बाल कितने जो है हाइड्रेटेड हो जाते हैं, आपके बाल कितने नर्म मुलायम सिल्की खूबसूरत और चमकदार हो जाते हैं। ये इस तरह होगा जब आप 30 अज्जा पर मुश्तमिल ये जोड़ी इस्तेमाल करेंगे, केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू को। तो मैं बात ये कर रहा था कि बहुत सारी खवातीन को पता है कि ऑयल केसन का बहुत ही जबरदस्त है, तो वो क्या करती है अपनी बचत करने के लिए ना ऑयल तो केसन का ले लेते हैं। ठीक है जनाब, लेकिन शैम्पू वो इस्तेमाल करते हैं जो राशन के अंदर आता है, वो भी बाबा जान जो भी लेकर आ जाए, अम्मी जान भाई जान जो भी शैम्पू लेकर आ जाए वो इस्तेमाल किया जाता है। वो ये समझ रही होती हैं कि ये हमारी बचत हो गई है। ठीक है जनाब, बस ऑयल हमने ले लिया, शैम्पू हम कोई भी इस्तेमाल करेंगे नहीं भाई। बालों को खराब करने में जितना बड़ा किरदार शैम्पू का होता है ना, किसी भी और बैरूनी अवामिल का नहीं है, किसी भी बैरूनी अंसर का नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि जनाब बहुत सारे शैम्पू जो होते हैं वो इतने हार्ड फार्मूला होते हैं, ना ही उनके अंदर कंडीशनर होते हैं, ना ही उनके अंदर विटामिन होते हैं। आप यकीन कीजिए कि हमारा फार्मूला जो है किसी प्रोफेशनल कंपनी को आप दिखाएं तो वो ऐसे आंखें खोल के बैठ जाएगी कि भाई इतने इतने दिल वाली ये कंपनी है कि भाई इसने विटामिन को भी ऐड किया, B3 को भी नहीं छोड़ा, B5 को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, एलेंटॉन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने जो है कंडीशनर जो है डायमेथिकोन डायमेथिकोनॉल इसको भी ऐड कर दिया, तो इसको बच क्या रहा होगा कंपनी को, तो हमें क्या बच रहा है, हमारा नाम बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और केसन शैम्पू अब वो शैम्पू बन चुका है कि यकीन करें बड़े बड़े ब्रांड इतने नहीं पड़े होते जितना एक दुकान के ऊपर केसन शैम्पू पड़ा होता है। तो वजह क्या है जनाब, वजह है कि यह बहुत ही प्रीमियम किस्म का हमारा शैम्पू है। ठीक है जनाब, तो ये बचत बिल्कुल भी मत किया कीजिए कि ऑयल तो केसन के ले लिया, शैम्पू कोई और, फिर हम जिम्मेदार नहीं है, फिर हमारे हाथ खड़े हैं, फिर बता रहे हैं आपको। ठीक है जनाब, हमारे पर कोई गिला नहीं होना चाहिए, आपके दो मुंह बाल ठीक नहीं होते, आपके बाल जो है नर्म मुलायम नहीं होते, चमकदार नहीं होते, क्योंकि जनाब एक अच्छे ऑयल की ऑयलिंग के ऊपर पानी फेर देता है एक बुरा शैम्पू। तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का हमारा शैम्पू है जनाब, जो कि 5-in-1 है, यानी कि 5 बड़े मसलों को हल करता है। सो ये जोड़ी इस्तेमाल कीजिए, हम जोर आपको इसके ऊपर इसलिए देते हैं कि भाई इसके अंदर जो है कुछ ऐसा है कि जब आप इस जोड़ी को इस्तेमाल करेंगे ना तभी जाके आपको बेतहाशा फायदे हासिल होने हैं। तो जनाब इस जोड़ी के साथ मिलता जुलती एक कहानी है, पुराने दौर की कहानी है जनाब, शहजादा सलीम और अनारकली की कहानी। तो अनारकली और शहजादा सलीम के दरमियान क्या बॉन्डिंग थी, इस जोड़ी की कहानी क्यों अमर हो गई है, क्यों दुनिया नहीं भुला पा रही, इन दोनों की दास्तान को तारीख में लिखा गया है और आज तक लिखी पड़ी है और इसकी यादगार मौजूद है। सो आज देखते हैं इस कहानी के पहलुओं के ऊपर नजर डालते हैं। कहा जा रहा है कि शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर और अनारकली की मोहब्बत की कहानी सबसे ज्यादा मशहूर रोमानी रोमानवी और अलमनाक दास्तान मानी जाती है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें मोहब्बत, इक्तिदार, खानदानी जलाल और रिवायत की टक्कर को दिखाया गया है। सामरी कराम कहते हैं कि अनारकली का असल नाम नजीरा बेगम या शर्फ-उन-निसा बताया जाता है। वो एक इंतहाई खूबसूरत रकासा और कनीजा थी जो मुगल शहंशाह अकबर आजम के दरबार से वाबस्ता थी। उसके हुसन, दिलकशी और गोरी रंगत की वजह से अकबर ने उसे अनारकली, अनार के दरख्त का शगुफे का खिताब दे दिया था।

जी जनाब, कहते हैं कि शहजादा सलीम अकबर का बेटा और वली अहद, जो जब अपनी मुहिमात से वापस लौटा तो वो अनारकली के हुस्न और उसकी शख्सियत पर फिदा हो गया। दोनों के दरमियान पोशीदा मोहब्बत का आगाज हुआ जो जल्द ही परवान चढ़ गई थी। दास्तान के मुताबिक एक दिन दरबार में रक्स के दौरान शहनशाह अकबर ने आईने में अनारकली और शहजादा सलीम के दरमियान मोहब्बत भरे इशारों को देख लिया, जिससे ये राज फाश हो गया। अकबर आजम एक कनीज और मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस के दरमियान इस ताल्लुक के सख्त खिलाफ था। उसकी चंद बड़ी वजूहात ये थी। तबकाती एक फर्क था कि एक कनीज मुगल खानदान की बहू या मलका कैसे बनेगी। सियासी मसले थे कि अकबर को खौफ था कि ये इश्क सल्तनत के अमूर और सलीम की तवज्जो को मुतासिर कर देगा। अब कहते हैं रिवायत में लिखा है कि अकबर ने अनारकली को कैद करवा दिया था और सलीम को इससे दूर रहने का हुक्म दिया, लेकिन सलीम अपनी मोहब्बत पर कायम रहा और उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत तक का ऐलान कर दिया था।

जनाब, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा इसका अंजाम है। सामिन इकराम, रिवायात के मुताबिक जब सलीम की बगावत नाकाम हो गई, यानी कि अपने वालिद के खिलाफ ये शहजादा खड़ा हो गया था अनारकली को पाने के लिए, लेकिन उसकी जब बगावत नाकाम हो गई तो अकबर ने अनारकली को इबरत का निशान बनाने का फैसला कर लिया था। कहते हैं कि 1599 के आसपास अनारकली को लाहौर में दो दीवारों के दरमियान जिंदा चुनवा दिया गया था। अब कहा जाता है सामिन कराम के सलीम को, शहजादा सलीम को बेहोश कर दिया गया था, या दूसरी रिवायत के मुताबिक किसी और जगह भेज दिया गया था, जिन दिनों में अनारकली को जिंदा दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था ताकि शहजादा सलीम अनारकली को ना बचा सके। लेकिन सामिन कराम, इस कहानी की एक रिवायत ये भी है कि कुछ तारीख दान और मकामी रिवायत में ये भी मिलता है कि अकबर की माँ या खुद अकबर ने रात के अंधेरे में दीवार के पीछे से एक खुफिया रास्ते के जरिए अनारकली को फरार करवा दिया था, लेकिन शर्त यह रखी गई थी कि वो मुगल सल्तनत के हदूद छोड़ देगी और कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद वो गुमनामी की जिंदगी जीकर दुनिया से रुखसत हो गई। जी जनाब, ये वो कहानी जो अमर हो चुकी है। जब शहजादा सलीम शहनशाह जंगीर के नाम से तख्त नशीन हुआ, ठीक है जनाब, जब ये बादशाह बन गया शहजादा, तो उसने अपनी अधूरी मोहब्बत की याद में लाहौर में एक शानदार मकबरा तामीर कराया, जिसे आज भी मकबरा अनारकली कहा जाता है। इस मकबरे के हीरे जैसे कीमती पत्थर पर जहांगीर ने फारसी का ये मशहूर शेर लिखवाया था, जिसका तर्जमा है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में एक बार फिर अपनी अनारकली का चेहरा देख लेता तो क्यामत के दिन तक अपने परवरदिगार का शुक्र करता रहता।

जनाब फ्री टाइम के साथ चाय पीते हुए जनाब मजा ले रहे होंगे आप मेरी बातों का, और मजे मजे की बातें जो काम की बातें हैं भाई इनको एक कान से गुजार कर दूसरे कान से गुजरने मत दिया करें, अपने दिमाग के अंदर जनाब इनको रखा करें, क्योंकि हम जितने भी काम कर रहे हैं यकीन कीजिए केसन के प्रोग्राम के अंदर हमारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज आपके फायदे के लिए है। केसन की हर एक प्रोडक्ट आपके ढेर सारे फायदे के लिए है। ये अब आपकी डिपेंड करता है कि जनाब आप कितने जल्दी अपनी आंखें केसन के ऊपर खोलते हैं और केसन के हर एक प्रोडक्ट को अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। हमारे पास मैं कहता हूँ कि दर्जनों के हिसाब से जनाब फैमिलीज मौजूद हैं जब वो केसन की खरीदारी, क्योंकि हमारी अपनी मेन शॉप है केसन शॉप अकबर प्लाजा मियां कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल बैक साइड में मल्ला गुसाइया में, तो वहां पर जब आते हैं तो भाई यकीन कीजिए कि वो

कब आ रही है, ये कब आ रही है। तो ये बेसिकली आपका ट्रस्ट होता है कि आप एक कंपनी के ऊपर 10,000 का खर्चा भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी हम जो चीज भी खरीदेंगे, यानी कि आपको मजा ही नहीं आ रहा कि केसन की अगर ब्लीच नहीं है तो आपको मजा ही नहीं आ रहा कि भाई केसन की ब्लीच क्यों नहीं आ रही, केसन की ब्लीच कब आएगी। और यकीन कीजिए केसन की जो कहानी है ना वो आपके पुरजोर फरमाइशों के ऊपर है। केसन जब लॉन्च हुई थी तो केसन का सिर्फ हेयर ऑयल था, उसके बाद लोगों ने कहा शैम्पू क्यों नहीं है, हम शैम्पू लेके आ गए। फिर लोगों ने कहा इसकी क्रीम, इसकी ब्यूटी क्रीम क्यों नहीं है, इसके फेस वॉशेस क्यों नहीं है, इसके सोप क्यों नहीं है। तो आपके कहने के मुताबिक आप जो जो मांगते गए, जो जो मांगते गए, हम आपको सरदस्त

0: जी जनाब, मैं आपसे बात कर रहा था कि कल शो के बाद जो है कुछ मैसेज हमारे साथ है टांग से, अजीजुल्ला भाई जो है कल हमें सुन रहे थे, उनका शो के बाद हमें जो है फीडबैक उनका
1: चमक
0: रिसीव हुआ था। ठीक है जनाब,
1: से महके हर तरफ
2: पांच प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
0: जी जनाब, इसके अलावा हमारे साथ कल के जो फीडबैक पे था सबा साइम डेरा इस्माइल खान से थी जनाब, और उनका मैसेज भी हमें 5:01 पर मिला था। तो अगर सबा साइम इस वक्त सुन रही हैं तो उनका फीडबैक जो है मुलाजा आपके सामने है। सलाम भाई जान, कैसे हो? सबा साइम बात कर रही हूँ दी खान से। भैया मैं सोप यूज कर रही हूँ, बहुत बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। अच्छा जी, इन्होंने नहीं लिखा कि ये कौन सा सोप इस्तेमाल कर रही हैं। जाहिर बात है कि गर्मियों में हम जोर दे रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप इस्तेमाल करें केसन का, कौन सा? जी जनाब, केसन का जो जाफरानी साबुन है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जाफरान नेचुरली तौर पर एक सनब्लॉक का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, सो आपको जो गर्मियों की धूप है तपिश से बचाएगा। इसके अलावा एक और भाई थे जनाब, उन्होंने भी मैसेज किया हुआ था कि भाई जिस तरह आपने जाफरानी सोप के बारे में बताया है वैसा ही कमाल का ये साबुन है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी टांग से थे। तो टांग से ये जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, मैं इनको शहादत कहता हूँ, और ये हर प्रोडक्ट की शहादत आप लोगों को आपके अपने लोग दे रहे हैं कि भाई कितने अमेजिंग है। कॉलर है हमारे साथ, उनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है मोहतरम हमारे साथ, नाम बताइएगा। क्या सर, क्या कह रहे हैं? तेल है ना शिफाए दर्द, तेल शुतर मुर्ग वाला केसन दा शिफाए दर्द, कमजोरी को खत्म करे तुसा इस्तेमाल करो ताकि सारा पट्टे नवे लग सके जिवे रिपेयर थी गया हो। बस ठीक है, बहुत मेहरबानी से, शुक्रिया नवाज़िश। और कांग से हमारे
2: पांच प्रॉब्लम्स का एक सलूशन
0: शिफा दर्द। जी जनाब, ये प्रोडक्ट है भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर कोई बंदा खामोशी से अगर दर्द को सह रहा है ना तो बस आप उसकी बस कर दें। ठीक है जनाब, उसे तोहफा दे केसन का शिफा दर्द। और मैं टांग वालों से भाई मुखातिब हूँ, डेरा वाले तो केसन की जान है, केसन को खरीदते हैं, इनकी बेपनाह मोहब्बत है। टांग वाले नए नए हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं, हमारे मेहमान बन रहे हैं भाई, सबको मनी बैक गारंटी के ऊपर है। आप कोई भी चीज केसन की खरीदते हैं ना, कहीं से भी खरीदते हैं, कहीं से भी, चाहे हमारा सांसों का जो है शिफाए दर्द है, चाहे हमारी हेयर केयर जोड़ी जो कि आपको 1,000-950 रुपए में मिलेगी, दोनों इकट्ठे खरीदेंगे, छोटी 750 की मिलेगी,

आपको रिजल्ट ना मिले ना, आपके पैसे अमानत हैं खलील दाबे शवान के पास, आपके पैसे केसन के पास अमानत हैं उस दुकानदार के थ्रू जिससे भी आपने चीज लिया। अगर चाहें तो मेरी ये वॉइस आप रिकॉर्ड कर लें अपने पास, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें और हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आपको लगे कि आपने इसके ऊपर पैसे भी लगा लिए और आपको कुछ टाइम भी गुजर चुके एज पर योर प्रोडक्ट, ठीक है जनाब, कोई भी प्रोडक्ट अपना टाइम लेती है, ठीक है जनाब, हर प्रोडक्ट का अपना टाइम होता है रिजल्ट देने के लिए। जैसे कि शिफाए दर्द है 5 मिनट के अंदर आपको रिलीफ देती है, इसी तरीके से वेट कम पेट कैम है उसका अपना टाइम है, हेयर ऑयल शैम्पू है उनका अपना टाइम है, सोप है उनका अपना टाइम है, क्रीम है उनका अपना टाइम। एज पर प्रोडक्ट अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं और आप ये समझते हैं कि भाई मैंने तो इसको इतना इस्तेमाल कर लिया है जी, मजा नाश्ता दी, तो फिर आप जो है बिल्कुल उसी दुकानदार से पैसे वापस ले सकते हैं। अगर आपको वो पैसे वापस ना करें ना, मेरी आवाज सुनाए, या फिर हमारा नंबर आपके पास हर वक्त होता है, मुझे कॉल करके भाई ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, मैं उसके कान खींचूंगा कि भाई आपको आपके पैसे क्यों नहीं वापस कर रहा जब चीज ने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम पिछले 4-5 सालों से ये कह के थक गए हैं कि मनी बैक गारंटी है, आज तक कोई आया नहीं हमारे पास, इक्का दुक्का कोई एक लोग आए हों जिनको, क्योंकि स्किन का भी बाजू का जो है सूट करने का भी हर स्किन का अपना एक रिएक्शन होता है, ठीक है जी ना। तो उस दिन एक हमारे साथ फीमेल आई हुई थी दानिया नीरज से, तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि भाई भाई मैं क्या इस्तेमाल करूं, तो मैंने उन्होंने कहा कि ग्लूटावाइट क्रीम और फेस वॉश इस्तेमाल करें, लवली फेस वॉश। तो वो लेके गई तो 4 दिन बाद आ गई कि भाई ये फेस वॉश मेरे भाई को बहुत ज्यादा सूट कर गया, तो मैं दूसरा लेने के लिए आई हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हर प्रोडक्ट हर स्किन को भी उस तरह सूट नहीं कर रही होती, तो जो आपकी स्किन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप केसन के प्रोडक्ट को चूज करेंगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट शिफाए दर्द अपनी जगह एक अपनी मिसाल है जनाब, नकालों से होशियार रहे हैं और केसन शिफाए दर्द की बोतल के ऊपर जो है शुतुरमुर्ग की तस्वीर जरूर देखिएगा, सील जरूर देखिएगा कि शिफाए दर्द सील

कल नेटवर्क का इश्यू था, बहुत सारे मैसेजेस हमें शो के बाद रिसीव हुए। रईस भी कल पूछ रहे थे कि खलील भाई शो बहुत बेस्ट है, आरजे तसीर क्यों नहीं आए हैं और उनका शो किस दिन होता है। तासीर के ये दिन है वैसे, जुमा हफ्ता इतवार जो है ये तासीर को हमने दिए हुए हैं प्रोग्राम कि आप लोगों ने केसन के प्रोग्राम करने हैं, लेकिन जो है तासीर का कोई पर्सनल कोई मसरूफियत है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो मैं अपने दिन उनको दे दूंगा। ठीक है जनाब, अगर मैं जुमा हफ्ता और इतवार तीन दिन कर लेता हूँ तो वो जैसे फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह सोमवार मंगल बुध जो है वो उनको मैं दे दिया करूंगा। हफ्ते में जो है वो तीन दिन तासीर के हैं मेरे इस शो में, पश्तो प्रोग्राम आपके साथ करेंगे और कुछ दिन जो है मेरे हैं। ठीक है जनाब, और आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, टांक साबिर आबाद से शेख फारूक, खलील साहब मैं खामोश लिस्नर हूँ,

0: आचरण, कहते कि मैं खामोश लिस्नर हूँ और कहते कि मैंने जाफरानी साबन लिया तो बात बन गई। भाई जाफरानी टांक वालों, टांक वालों से मुखातिब हूँ। भाई जो प्रोडक्ट केसन आप लोगों के पास लेके आई है ना, ये आम प्रोडक्ट नहीं है, ना ही आपने ऐसे प्रोडक्ट पहले कभी इस्तेमाल किए होंगे, एक दफा आजमा के तो देख लें। जी हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
1: नूर नजीर अंधेरे तू।
0: नूर नजीर, अच्छा जी
1: जी बचरा की में हाल है तेरा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, असन तो बिल्कुल ठीक है, तुसा ठीक बते रे?
1: बादी असन किसी खरदिया ने लिखे संख्या आते रे तू
0: वजह
1: अच्छा ना कुछ है तेरी पसंद है आती दुकान दी।
0: अच्छा जी क्या बात है, यानी केसन
1: तो बहुत मैं के फूद मैं दे हाथ कम दे हाथ छोटी है
0: कोई नी मसला मैं भी सोनी पावा, मैं भी लिपस्टिक सुर्खी ला के पावा।
1: एक बुढ़ी आई ना घर बैठी आई ना पोत्री को आकर मेरी अंदर वन पतीसी चाह की ना बच्चे
0: पतीसी की बतीसी
1: डंडा आ रही
0: बतीसी आते लोग पतीसी नहीं होते पतीसा तो पतीसी को निकल ही है
1: वो आगे दादी आ रहे रोटी नहीं बनी आगे बच्चा दान ला के तेरे दादे को खेल दिखे नहीं।
0: दंद ला के दादे को खिल दिखे दिया है जी
1: खिल दिखे दिया
0: रोटी नहीं पकी दूसरी आके मैं रोटी नहीं पकी दादी
1: वो आके मैं आज फदी हां फदी को कुकु के मारे ला के रे के
0: ठीक है सही ठीक है बहुत मेहरबानी दादी ते वासा दे केसर शॉप से कल आने पे मैं तो इंशाल्लाह इतवार दी दीवा
1: मैं आ नहीं भैया मैं दी ला के
0: मेहंदी ला के चलो ठीक है आओ असा थोड़ा इस्तकबाल करे सो इंशाल्लाह। कैसे खिनसो केसन दी कैसे खिनसो
1: मैं समोसे खा पा दे
0: समोसे दंद त रहिन को नहीं समोसे की मैं तो छोले के बस
1: मैं डोरी डंडा नाल चाहती है सब कूट के
0: डोरी डंडा नाल होसी तो कूट के समोसा को है जी
1: ये सारा वाला को चलाओ।
0: चलो ठीक है जी बहुत मेहरबानी ये जोड़ी है जी जनाब ये जोड़ी है बागमाल और ये है केसन जोड़ी केसन ऑयल और केसन। ये जो कहानियां भाई आप लोगों को दास्तानें हम सुना रहे हैं कभी लैला मजनू की कभी सस्सी पुन्नू की तो भाई कहानी

जी जनाब, चाय के कप के साथ, और मेरा कप बिल्कुल ही खत्म हो गया है 45 मिनट पर, कोई आधा घंटा पहले मिले मुझे मिला था। और उम्मीद है मेरा प्रोग्राम आप भी चाय के कप के साथ जो है सुन रहे होंगे। अच्छा जी, ट्रांसिस साबिर अब्बास से शेख फारूक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और कहते हैं कि मैं खामोश लिसनर हूँ, ज़ाफ़रानी साबुन लिया तो बात बन गई, और कहते हैं कि मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द होता है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, प्लीज हेल्प मी, बंडल ऑफ थैंक्स। पहले तो ये दूसरा बंदा है जो ज़ाफ़रानी सोप की शहादत दे रहा है। एक कल वो भाई थे, मैं उनका मैसेज ढूंढ रहा हूँ कि क्या नाम था, जो कह रहे थे कि भाई आप जैसा इस सोप के बारे में बताते हैं ना, ज़ाफ़रानी साबुन के बारे में, मैंने इसको लिया तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप बताते हैं। तो जिस्म में दर्द बेसिकली जो होता है उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, ठीक है जनाब, उसमें लेक ऑफ एनर्जी भी है, उसमें अभी जो हमारी एक प्रोडक्ट आने वाली है ना, वेट गेन वाली प्रोडक्ट, वो जिस्मानी ताकत के लिए होगी, ठीक है जनाब। तो उसको आप आधे गिलास के अंदर डालकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ी एनर्जी मिलने वाली है उससे, वो बहुत प्यारी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जिस्म को परवा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, और ताकत, जिस्मानी ताकत में इजाफा करने के लिए हमारी प्रोडक्ट इंशाल्लाह आपको इसी जून के अंदर मिलेगी, ठीक है जनाब। ये इसी जून के अंदर इंशाल्लाह आपको वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट है, अभी प्रिंटिंग वगैरह पैकेजिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो जैसे होगा तो वो आप यूज कीजिएगा, वो भी हो सकता है। और बाज़ुकात आपके जिस्म के अंदर खून की रगों के अंदर खून की रवानी मुतासर होती है, जैसे कि अक्सर लोगों को टांगों के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है, तो उसकी वजह जो रगे हैं उनके अंदर खून की सप्लाई ठीक नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। लेकिन शिफाए दर्द की जैसे आप मालिश करते हैं, तो शिफाए दर्द के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, एक होती है ना उसका अर्क शामिल है, और जो ये सूख मिर्च होती है इसका जो अर्क होता है ना, ये गर्माइश पैदा करता है। जिस तरह आपको मिर्च लग जाए तो आपको जलन होती है ना, तो ये बेसिकली जैसे आप अपने टांगों के ऊपर लगाते हैं तो उसके असर से ना ये फौरन उस हिस्से को गर्म कर देता है, शिफाए दर्द की बॉडी का। तो क्या होता है, खून की बढ़ती है,

0: ठीक कर। अच्छा जी, आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज में मसला है? आपके मोबाइल में मसला ना हो यार, जरा चेक करो अपने मोबाइल को, क्योंकि मुझे तो आज तक आज किसी ने नहीं कहा दोनों एफएम के ऊपर आवाज में बिल्कुल सही जा रही है। मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ कि आवाज का मसला है, कि आवाज का मसला नहीं है। एनी हाउ जनाब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा नंबर एक दफा फिर से 0344-936-3366 के ऊपर एक और कॉलर हमारे साथ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी शबीर अल मारूफ शबरा उस्ताद। सर जी किवें हाल है? ठीक ठाक वे तो एफ एम करण पड़ता पे सही
1: कोई पता कौन जो रहना आ जाता है आसी पी हफ्ता का भी चला दो ऐसी तकरीबन आ जाता है बहन पता नहीं किसकी लाहौर या किसी इस्लाम बात को।
0: अच्छा यानी कि हाल तक कम लंबा है ऐसा तो सोची पैसे कल परसों सा लाइव थी वैसो।
1: हाँ कल परसों तो आज नहीं लेकिन मैं तो लग जाएगा लंबा काम है तो ऐसा अपना
0: जुगाड़ ला के हर बंदा सारी हर बहन हर बिरात जुगाड़ नहीं ला सकते वो तो पहाड़पुर दे फिर इंतजार ही बैठे की कहने तुलसी जो सुन सु प्रोग्राम
1: को हर लिसनर को अगर
0: मसला
1: इस्तेमाल करो बड़ा फायदा देंदा वाला कुल के जो है ना ग्रोथ करेंगे शहजादा सलीम की क्या बात है क्योंकि जो है ना ये जोड़ा थे पत्थर थे हाजमा कंट्रोल ये त्रे चीजें सारी खास कर विलेज वगैरह है मसला हुए तो वैसे भी सिटी दी के मसला है लेकिन ये त्रे चीजें जरा तो नवा जरा तो लॉन्च करेंगे तो हो ये कि ये खांसी का कैसा अंदर हो बने तो खांसी जब उन सारे लोग आते हैं जो खरीद बन को आपको देखो खांसी क्योंकि बुखार खत्म थी जाए तो खांसी जो मसला बना देने में दबाव का यू ही कम।
0: चलो असली कंपनी सारी तो माशाल्लाह कॉस्मेटिक कंपनी है ना उनके वास्ते बात थोड़ा जिया वो उनकी कैटेगरी थोड़ी तब्दील थी रहती है ना। ठीक है जी मेडिसन चाहिए सारे नेचुरल थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट है ना वो टोटली ड्रैप के अंडर आना पौधा ड्रैप एक अथॉरिटी है पाकिस्तान की ना मेडिसन की। ठीक है वो बात कम थोड़ा लंबा चौड़ा थी मैंने दूध अथॉरिटियों को संभालना इन कॉस्मेटिक अथॉरिटी को समझेसूँ कि मेडिसन वाली अथॉरिटी को समझेसूँ वो बड़ा कम थोड़ा लंबा थी नहीं मुझे जरा एक अपने दायरे समझते हैं जेरे दायरे की सारे को पॉसिबिलिटीज इन कि अस इन दायरे के कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो तो असा गिन के आने पे। ठीक है जी इनशाला सर्दियां आम वजन देखसू कोई कोई सारे को ऐसा कोई इंग्रेडिएंट हो जैसे इनटेक करके बना गिन सके तो इनशाला जरूर इन तो सजेशन जरूर दी।
1: बाकी माशाल्लाह ता कलम का शुक्रिया अदा करे से जो हूं वो अवेयरनेस भी है इंडिपेंडेंट ये रहना बाकी समाज ही करेंगे मैं तो मैं कोई भी कदर नहीं पता लगे जो केस नंबर वन में पाकल सारे सुनने में कुछ हम बात कर रहे हैं बात कर इतने बात कर रहे हैं कि बांग जितने मेरे मामा जी सारे डरवाल सारे कुछ हम बात कर
0: रहे हैं। कॉलिंग नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे नंबर के लोग कहते हैं कि नंबर आप नहीं बताते हैं और जो है तसीर भाई तो इतना बताते हैं हमें याद हो जाता है तो तसीर भाई एक ही नंबर बता रहे होते हैं मैं दो दो नंबर आपको बता रहा होता हूँ। तो इधर फिर से जो अगर हम टेलनॉर के ऊपर कॉल करना चाहें तो 0344-936-3366। अच्छा जी टांग के अंदर जो लोग हमें सुन रहे हैं भाई हमारे प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेंगे सदाम प्लाजा में जाएंगे मंसूर जनसोर है दुकानदार वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा वकास ट्रेडर्स है जनाब। ठीक है जनाब वकास ट्रेडर आप वहां पर भी जाकर केसन के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। बिलाल मार्केट के अंदर नसीम जनरल स्टोर है होलसेलर है जनाब उनसे भी हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम क्या हाल जनाब
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अंकल असद आ चुके हैं हमारे साथ।
2: बिल्कुल जी बेशक वो दांतों के बारे में आपके प्रोडक्ट में कोई चीज है?
0: हाय दांतों के बारे में हम सोच रहे हैं कि दांतों को भी वाइट होना चाहिए ताकि लोग मुकम्मल तौर पर प्यारे लगे अभी तक
2: हमारा एक दोस्त है उसके दांत बहुत खराब है मैंने कहा आज पूछूंगा रुपया इंशाल्लाह आपको दुकान ले जाकर
0: दांतों के लिए। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं ना केसन की सारी चीजें तो खरीद लेते हैं कहते हैं टूथपेस्ट क्यों नहीं है आपका।
2: ضروری
0: ہے یہ آئٹم بھی بہت ضروری ہے اور بہت سارے لوگ ہمیں اس کا کہہ چکے ہیں نا, تو انشاءاللہ اس کے اوپر یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس کو ہم لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی سجیشن بھی آ گئی. اور آپ خیریت سے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں.
2: اللہ پاک کیسے زندہ باد, کیسے پروڈکٹ زندہ باد.
0: بہت شکریہ جناب. تھینک یو جی, تھینک یو. بہت شکریہ جناب انکل سے.

0: अच्छा दिलराज कल भी हमें बता रही थी हमारी प्रोडक्ट वेट कम पेट कम इन्होंने यूज की है वजन को कम करने के लिए डेफिनेटली। तो कहते भाई मैंने वेट कम पेट कम 13 दिन इस्तेमाल की है और तकरीबन कहते हैं कि 13 दिन और चलेगी। अच्छा जी थोड़ा खा रही हैं आप तो फिर एक चम्मच तो नहीं खा रही है आप कहीं 2 चम्मच डेली लेने होते हैं। हमारे साथ जो है वो सोनिया आपी अवान डेरा से। अस्सलाम वालेकुम आपी।
1: वालेकुम सलाम।
0: कैसे हैं आपी? खैरियत से हैं आप? ठीक है।
1: आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: क्या अभी तो धूप निकल आई है ये देखे मुझे तो विंडो से धूप नजर आ रही
1: अब धूप है। चार बजे
0: अच्छा हो जाता। आज मैं जब 4 बजे आया हूँ यहाँ पर तो बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी अभी लेकिन
1: बिल्कुल। अनीसा और अपनी अरूबा फातिमा ये सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए।
0: अनीसा और जो मानूर है ना वो उनकी वो भी सुन रही होगी मुझे पता है लेकिन उनका सीन होता है SMS पैकेज वाला। वो कह रही होती है जब नहीं आ रही फिर एक हफ्ते बाद मैसेज आते हैं वो भाई मेरा पैकेज नहीं था और जो है इस वजह से जो है ना प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। अभी जब आएंगी तो वो यही बात बोलेंगी। और अरूबा तो रेगुलर आती हैं आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रही शायद बिजी हो या कोई और काम हो लेकिन आपने उन्हें याद कर लिया तो आप उनका भी हक बनता है कि आप याद करें।
1: प्रोग्राम
0: चलो जी हमें भी बिल्कुल हर बंदे की अपनी जगह होती है और उसकी कमी महसूस होती है। आप ही ये जोड़ी जो हम जोड़ रहे हैं कहानियों के साथ कि वो जो पुराने दौर की कहानियां थी प्यार मोहब्बत इखलास से भरे उनको हम भुला नहीं पा रहे ना कोई वजह तो थी कि हम नहीं भुला पाए उनके अंदर प्योरिटी थी खालिस्पन था ठीक है। और ये जो हमारी जोड़ी है आयल और शैम्पू की जोड़ी ये भी खालिस्पन के ऊपर मुश्तमिल है। एक दफा आप ले लेंगे तो छोड़ेंगे इसको?
1: जी हाँ मैंने पहले तो जोड़ी भी थी जब पहले ये ऑयल लॉन्च हुआ था फिर पहले ऑयल लिया था फिर जैसे जोड़ी स्टार्ट हुई जोड़ी हुई।
0: तो आप ज्यादती आप हमारे शैम्पू आप हमारे ऑयल के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही कोई और शैम्पू लगाकर?
1: नहीं
0: दोनों की जोड़ी को दोनों की जोड़ी बरकरार रखी हुई है।
1: वो फिर आपसे कह रही थी ना कि वो जो आपने कहानी सुनाई थी मलका वाली फिर उसके रिचार्ज में
0: ढुलवाया बिल्कुल
1: मैंने कहा था कि आप मेरे क्या बनवाइए उन्होंने बड़े वसाफ ने कहा क्या कब बनवाया था उस वर्षा ने ना ताजमहल मैंने कहा बनने के बाद मुझे कहते हैं मार के तो देखो
0: ये तो बात की बात है पहले मर के तो दिखा दो मुझे
1: मैंने कहा मेरा प्रोग्राम कैंसिल
0: चलो ये तो बात की बात है कि मैं बनाऊंगा क्या पहले मर के दिखा दो। अल्लाह आपको सलामत रखे सेहत के साथ रखे हमारी आपी को कभी कुछ ना हो।
1: मुझे
0: ये हर मर्द का प्रोग्राम होता है एक आपके वाले का नहीं चलो ठीक हो गया बहुत शुक्रिया
1: और
0: जनाब सब सुनने वालों के सलाम। और आप ही कह रही थी जनाब के शाहजहान ने शहनशाह शाहजहान ने मलका मुमताज के लिए जो है वो आगरा का जो ताजमहल है ना वो बनाया और ये उसने वादा लिया था शमशाद बेगम क्या नाम था उसका मुमताज बेगम के भाई एक तो शादी नहीं करोगे मेरे पास उन कान खोल के सुन लो जी एक तो दूसरी शादी नहीं करोगे मेरे मरने के बाद और दूसरा ये कि मेरी याद में एक ऐसा महल बनाओगे कि दुनिया देखे। तो ये दुनिया का आई थिंक 8वां अजूबा है ताजमहल जिसको 20 साल लगे थे और शहनशाह अकबर ने सारे मुल्क की जमा पूंजी टैक्स लगा लगा कर ना ताजमहल बनवा दिया
2: सच्ची।
0: और लेकिन मजे की बात ये है कि वो इतनी अलमनाक कहानी है कि उसके अपने बेटे ने ही शाहजहान अकबर को ना कैद कर लिया था और अपनी जिंदगी के 8 साल जो है वो ताजमहल को एक खिड़की से देखता रहता था और कहता था हाँ जी ये मेरी मुमताज का ताजमहल ना उसे क्या कहते हैं घूमने का वक्त मिलता
2: जुल्फ का पहला प्यार।
0: अच्छा ये कहती है कि भाई मैंने तो 400 रुपए वाली ली है तो वो तो 15 दिन 13 दिन इस्तेमाल किए तो 13 दिन की और होगी तो कहते हैं कि आधा चमचा खाती हूँ आधा खाएंगी तो फिर तो मई ना जाएगी।
2: सच्ची मोहब्बत
0: ये 2 चम्मच डेली आपने लेना होता है अगर आपने फास्ट रिजल्ट लेने हैं ना वेट कम पेट कम के 1 चम्मच खाली पेट सुबह और 1 चम्मच जो है रात को आधे घंटे बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस्तेमाल कर लें ठीक है जनाब तो ये आपके 15 दिन जाएगी। अगर आप 1 चम्मच खा रही हैं तो फिर तो
2: पहल
0: फिर तो 1 महीना जाएगी लेकिन आपको आधा चम्मच से इतना रिजल्ट मिला है माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी हाँ जी बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हम रिकमेंड कर रहे हैं जी इसकी खुराक है ठीक है जनाब इसकी जो खुराक है वो है 2 चमचे एक आपने सुबह खाली पेट वेट कम को खाना है और एक आपने क्या करना है, एक आपने रात को खाने के बाद। लेकिन दिलराज कह रही है कि मैं आधा चम्मच ले रही हूँ और आधे चम्मच सेब

0: जी जनाब, और डियर इस्माइल खान में भी आप लोगों में सुन रहे हैं, एक बंदे की कॉल आ रही थी, मैंने गलती से जनाब की कॉल काट ली, एक दफा फिर से कॉल कीजिएगा भाई। सलाम ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? आई एम सनम फ्रॉम टांक, जफरानी सोप जिंदाबाद। कहते हैं कि मेरे फेस के ऊपर एलर्जी थी, जैसा सोप यूज किया है जफरानी सोप, गिव मी अमेजिंग रिजल्ट। ये टांक वालों भाई, ये सारा फीडबैक टांक वालों का हमारे पास आ रहा होता है आजकल माशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने अभी यूज किया है। तो भाई आप आपकी स्किन का कोई भी मसला है भाई, 250 रुपए का ये साबुन मिलता है, जाफरानी साबुन केसन का, ठीक है ना, आप इस्तेमाल करें, यकीन कीजिए आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टरों के ऊपर आप लोग हजारों रुपए लगा चुके होंगे, वो रिजल्ट नहीं मिले होंगे जो आपको सिर्फ 250 रुपए का जाफरानी साबुन जो है दे सकता है। ठीक है जनाब, एक कॉलर हमारे साथ है जी, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है जनाब हमारे साथ?
1: वालेकुम सलाम सर, मुनीर बात कर रहा हूँ लक्का से।
0: जी लक्का से मुनीर बात कर रहे हैं, कैसे हैं बेहतर मोहतरम? अच्छे हैं आप, खैरियत से हैं?
1: शुक्र है अल्लाह का सर, मैंने कल भी रात किया था, आपने मैसेज करना था अपने प्रोडक्ट का, वो नहीं किया आपने मैसेज।
0: निकम्मे बंदे मैंने रखे हुए हैं, मैंने कहा भी कह था कि इनको बेस्ट। चलो जी, मैं खुद ही आपको शो के बाद मैसेज कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, वो आपने जो तीन मसले बताए थे
1: मैसेज कर दें, उनकी डिटेल भेज दें, इंशाल्लाह मैं आपको ये अकाउंट से खरीदूंगा।
0: हाँ बिल्कुल, जरूर जी जरूर खरीदेगा, और मैं आपका नंबर जो है ये अभी अपने नंबर के ऊपर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ से डिटेल हम भेज सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लक्का से है तो ये सनम भाई, टांग से मौजूद है हमारे साथ, और बिल्कुल भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना टांग वालों को भाई, ये जो केसन के साबन है ना, ये आम साबन नहीं है। ठीक है जनाब, बिल्कुल भी आपने इस तरह के नेचुरल सोप कभी भी यूज नहीं किए होंगे जो अब आप यूज करने जा रही हैं। ठीक है जनाब, और जो है दिलराज का मैसेज कि भाई मैं तो आधा चमचा ही खाती हूँ और फिर भी मेरा वजन बहुत तेजी के साथ कम हो रहा है। तो भाई अगर आपने भी अपने वजन को कम करना है तो केसन की वेट कम पेट कम फक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 15 दिन वाली है वो 400 रुपए की है। ठीक है जनाब, 400 रुपए से 1 रुपया ज्यादा मत दीजिएगा। और जो बड़ी है वो 700 रुपए की है। आप दुकानदार आपको 800 भी देंगे, लेकिन उसे बोलना है कि भाई ये कंपनी ने 1 महीने वालों के लिए ऑफर दी, 100 रुपए की रियायत हमने की हुई है। ठीक है, अगर 2 लेंगे तो वो आपको 800 की मिलेंगी, लेकिन अगर आप महीने की पूरी लेंगे तो वो आपको 700 रुपए की मिलेगी। और अगर दुकानदार चाहे तो इसमें भी आपको 50 रुपए जो है वो छोड़ सकता है, और 50 रुपए छोड़कर जो है आपको फायदा मिल सकता है। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम सुनने का बेहद शुक्रिया, पसंद करने का बेहद शुक्रिया, और सबसे बढ़कर केसन पर एतमाद करने का बेहद शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान में जफराबाद में अब्दुलरहमान जनरल स्टोर, हाजी जरी, इसके अलावा द्रबन चुंगियों के ऊपर खान कॉस्मेटिक, वहां से आप हासिल कर सकते हैं, बाजार भरे पड़े हैं। और अगर शिवस चौक के ऊपर मौजूद है तो उमर जनरल स्टोर शॉपिंग सेंटर, वहां से आप हासिल कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट, पाकिस्तान के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों में शामिल हो जाइए जिनको हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं। कल तक के लिए इजाजत।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
0: Rocking with the band. 88.

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4।